सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुन वालों, आज सोमवार का दिन है, 13 जुलाई का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है, 5 मिनट ओवर 7। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-66-11। वेबसाइट होता है radio sbs.nl। उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए। और हॉलैंड देश के बीच में मेडन नीदरलैंड में DAB प्लस रेडियो की जरिए और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी DAB प्लस रेडियो की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और ऐप भी आप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन के आवास में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवाज पे ये सुंदर भजन हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। 7:00 प्रोग्राम में 13 मिनट व्यतीत हो चुका है 13 मिनट ओवर 7। सभी को वेलकम प्रोग्राम भजन यात्रा में जहां जहां पर भी दुनिया की जो भी कोने में इस वक्त इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0332266611। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर आप रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप कर सकते हैं और सभी सुनने वालों जो ऐप किया है आप सभी के भी सभी को भी हेलो खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में ये सुंदर नया भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए अति सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम हर सुबह हमारी सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक और हर शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। आज सोमवार का दिन है, 13 तारीख जुलाई का प्रोग्राम बस पेश किया जा रहा है और आज भी खूबसूरत सुहाना मौसम, गर्मी सा मौसम बस होने वाले हैं।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में सोनाली की आवाज में ये भजन अभी आपने सुना। सर है 7:00 प्रोग्राम में 6 मिनट वेटेड हो चुका है, 6 मिनट ओवर हालो फॉक्स स्टूडियो टाइट हो चुका है और प्रोग्राम भजन यात्रा तकरीबन 8 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। हरिओम शरण जी की आवाज में एक सुंदर सा भजन आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर आप सुनते ही रहना। हरिओम शरण जी की आवाज में सुंदर सा भजन आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, आप जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0332 66 66 11।

हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। सोमवार का दिन है, 13 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। महेंद्र कपूर प्रोग्राम में

सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई श्री कृष्ण भजन अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है। चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का प्रोग्राम देश विदेश में बस सुनते हैं, दुनिया की जो भी कोने में सुनते हैं, उन सभी के लिए, उनकी पूरा परिवार के लिए और ख़ासतौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर

0: सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, यहाँ तक प्रोग्राम भजन यात्रा पेश की गए आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। कल मंगलवार है, कल सुबह 7 बजे से फिर प्रोग्राम भजन यात्रा जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt

आज बजकर प्रोग्राम में 9 मिनट में एडिट हो चुका है। रेडियो SBS की सरिये ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। सोमवार का दिन 13 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज भी काफी गर्मी सा मौसम बस होने वाले हैं।

सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चलिए आज की सुबह की प्रोग्राम में, जबकि बाहर की ओर देखा जाए धूप ही धूप का मौसम है, खूबसूरत सुहाना मौसम है, तो आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो वेव्स में इसके जरिए एक बड़ी ही खूबसूरत मैशअप बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हम है राही प्यार के गाना जो अभी बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

प्रोग्राम में भी इसकी गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। सूरज जगन प्रोग्राम में जाना कबूल इतनी सी बात है।

जगन की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। इतनी सी बात है गाना कबूल बस प्रोग्राम में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गगन, ये बात फिल्म प्रेम का गेम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई जावेद अली की आवाज में। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शान की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

सभी सुनने वालों की सेवा में बसपेश किया जा रहा है। हमारी सभी सुनने वालों को एक बार फिर से वेलकम स्वागत किया जा रहा है। काफी सुनने वालों तैयार है पुरानी नगमे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम सुनने के लिए। काफी सुनने वालों बस हमारा रेडियो SBS का ऐप पर

पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम सुनने के लिए। तो यहां से हम आपको ले चलते हैं रेडियो SBS का खास प्रोग्राम, वही प्रोग्राम जो हजारों हजारों सुनने वालों बस सुनते हैं, पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर। सबसे पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले प्रोग्राम में पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर, जो आप सब ही सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्कूल मास्टर फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है तलत महमूद और लता जी की आवाज में।

गाना जो पेश की गई तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है मुकेश जी की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

यूएस में एस के जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में लता और मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए फिल्म भरोसा की ओर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए मुकेश और सुलक्षणा पंडित की आवाज में ये गाना बस आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है महेंद्र कपूर की आवाज में।

0: लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है। कौन से सुनने वालों बस खबर किया है हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए और तार के जरिए भी किए हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। रोटरडम शहर से शीला भी तार किया है और खबर किया है कि इस वक्त हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। शुभ सुबह शुभ दिन शीला और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। खासतौर पर देहरादून शहर की रहने वाली उषा भी प्रोग्राम को सुनते हैं और वो भी खबर किया है गर्मा गर्म कॉफी के साथ इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं। श्रीमती बेया आमस्टरडम साउटोस में भी हमारा प्रोग्राम रोजाना सुनते हैं और खबर किया है खासतौर पर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम मिस नहीं होना चाहिए। और खासतौर पर ऐप द्वारा भी खबर किया है सुतमेर शहर की रहने वाली नेहा भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। अभी अभी स्टूडियो की ओर तार किया है कुछ बातें हुए हैं। नेहा आपको भी शुभ दिन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। आप भी प्रोग्राम को सुनते हैं तो जरूर तार द्वारा या तो रेडियो SBS का ऐप के जरिए हमें जरूर आप इतला कीजिए खबर कीजिए कि आप भी हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। अपना मोबाइल फोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर और उसी वेबसाइट के जरिए सीधे आप हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर सकते हैं। किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। इस तरह से मैंने आपको खबर किया मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम धूप का मौसम है
1: ए लड़की
0: प्यार भरी गाने

रेडियो SBS की सरिया किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस बीच की गए ये लड़की प्यार करेगी। कहते हैं बिन देखे हाँ कहूंगी, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और सबीना हमेशा पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं। शुक्रिया धन्यवाद आपको कहा जा रहा है और प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर मोहम्मद रफी एन आशा की आवाज में।

0: सच्चे के सारी शहर में आपसा कोई नहीं। मोहम्मद रफी एनाशिया ने फरमाई प्रोग्राम में खूबसूरत प्यार भरी गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आज सोमवार 13 तारीख जुलाई की खास प्रोग्राम में बहुत सी सुनने वालों है जो स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं। कुछ बातें होते हैं, कुछ हंसी मजाक भी होते रहते हैं तार पर। किशोर कुमार,
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार
0: हाँ, पूरे भी हम

0: बस बीच किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।
1: हम हैं
0: एड शहर पे है, विमला मोहन भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। विमला भी अनहेल मोए अनहेल मोए सोनखदा, खूब खूब अपना काम कर रहे हैं। आज भी गर्मी सा मौसम, खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले हैं। एन नटुलक विमला अनवीर फॉल लेकर मीठा मीठा स्खावेस। एक गाना जो एक सुनने वालों बस सुनना चाहते आज की प्रोग्राम में, आशा भोसले की आवाज में, द रॉक एंड रोल क्वीन आशा।

में अपना म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दो लोग थे लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। आप हर एक को खबर किया जा रहा है कि प्यारेलाल की पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा इनकी

काफी गानों में भी अपना संगीत दिया। और आपको खबर किया जा रहा है, एक की पत्नी जो है प्यारे लाल की पत्नी, उनकी कल 12 तारीख जुलाई रविवार का दिन 78 साल 78 साल की आयु में मृत्यु हो गई है। रेडियो SBS इन परिवारों को शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं।

या भारत देश नोएडा से अरुणेश जो हमें फिल्म एक्टर्स के बारे में, फिल्म के बारे में, म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, या कहिए पूरा बॉलीवुड के बारे में हमें खबर करते रहते हैं। इसके लिए अरुणेश शुक्रिया, धन्यवाद कहा जा रहा है। और आपको भी खबर किया जा रहा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल काफी अवार्ड्स हासिल किए थे, काफी फिल्म का अवार्ड्स हासिल किए थे, जैसे कि फिल्म मिलन जिसमें नूतन और खास तौर पर सुनील दत्त ने काम किया है। तो चले उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम

लुकीस और लता जी की आवाज में फिल्म मिलन का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए आसरो भी थे, आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। जिस तरह से आप सभी सुनने वालों को बस मालूम है, हमेशा आप सुनते हैं कि देश विदेश में भी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं, स्वीडन में, जर्मनी में, इंडिया, भारत देश, सूरीनाम देश में, दुबई में, देश विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में भी सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। हमारा रेडियो SBS का ऐप पर नैला ने ऐप किया है और इस वक्त

ये पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आज पहली मरतबा हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है नैला, जो इंग्लैंड साउथ हॉल में हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। एक खूबसूरत और सुहाना दिन पेश किया जा रहा है नैला, और प्रोग्राम जरूर रेडियो SBS का

संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अगली बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, शैलेंद्र सिंह और आशा जी की आवाज में जहरीला इंसान, फिल्म का नाम आशा भोसले।

सिंह और आशा जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई जहरीला इंसान फिल्म का नाम गाना जो दरोगा में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सोमवार का दिन है 13 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हॉलैंड देश के अंदर मौसम इतना हसीन खूबसूरत सुहाना मौसम है। आज गर्मी सा मौसम होने वाले है, कहीं कहीं 30 डिग्री होने वाले है या शायद 1-2 डिग्री ज्यादा होगा, लेकिन गर्मी सा मौसम है और इस वक्त धूप भी खूब अपना काम कर रहे हैं। धूप तो जोर तोर से निकला हुआ है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। चले प्रोग्राम में अब की बार लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं।

0: सुनना लैला की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों शुक्रवार 28 तारीख अगस्त फ्राइडे 28 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है और आप हर एक सुनने वालों को ये खबर किया जा रहा है कि कल से आप दरियाफ्त कर सकते हैं मुस्कुराता दुकान के पास में जो देन हाग शहर के अंदर में है वहां पर आपको सस्ती दामों में एक से एक खूबसूरत रक्षाबंधन आपको दिया जाएगी बिल्कुल सस्ती दामों में। तो जरूर मुस्कुराता दुकान के पास आप जरूर तशरीफ फरमाइए। हॉलैंडिस के अंदर सबसे बड़ा दुकान जो होते हैं जहां पर इंडिया भारत देश का हर एक सामान हर एक कपड़े हर एक गहने हर एक सामान यहां पर आपको दिया जा रहा है। 300 फीट ग्रोथ ये दुकान होते हैं। हाँ 300 फीट बड़ा दुकान जो होते हैं और जहां पर हर एक सामान आपके लिए होता है। दुल्हा दुल्हन के लिए कपड़े सलवार कमीज गहने मूर्ति देवी देवताओं की हर एक मूर्ति आपको दिया जा रहा है सस्ती दामों में हर एक साइज में जो आपको दिया जा रहा है। जरूर आप तशरीफ फरमाइए मंगलवार से लेकर के और रविवार तक। तो आपको खबर किया जा रहा है कल से यहां पर आप जाकर अपना रक्षाबंधन आप खरीद सकते हैं। शुक्रवार 28 तारीख अगस्त रक्षाबंधन का दिन है। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में और वो भी किशोर कुमार की आवाज में खूबसूरत सुहाना मौसम में ये गाना पेश किया जा रहा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: जिंदगी

रेडियो SBS की जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में अंदाज फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। तकरीबन 11 बजे तक पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। किशोर एंड लता होगा प्रोग्राम में, खुद डार द बिग बी अमिताभ बच्चन का फिल्म।

किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। आशा उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपने सुना और काफी पसंद किया है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

0: गोरा और काला, उसी फिल्म का एक गाना पेश होगा। और आज की पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना पेश किया जा रहा है मुकेश और लता जी की आवाज में। मुकेश और लता जी की आवाज में।
1: धीरे धीरे बोल कोई सुना ले।
0: कल मंगलवार है, सुबह 9 बजे से फिर आप सुनते ही रहना पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम।

कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना बरसात की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, जावेद अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

रही और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 0322 65 65 60 है। कुमार सानू एन

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है उमराव जान।

हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अरिजीत सिंह।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में कौर खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना।

गाना जो पेश की गए अजय और श्रेया जी की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर।

USBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। बाहर से सुहाना है, अंदर से इंजन पुराना है, गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना सोनू निगम एंड ऋषा शर्मा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। राहत जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सरगम और सुरेश वटकर की आवाज में ये गाना बस पेश की गए। नाम गूंज जाएगा फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म नकाब की ओर, जावेद अली की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए शरिया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

इस प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया घोषाल की आवाज में नजर फिल्म का नाम रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में सोनू निगम महालक्ष्मी आयर और साथियों के आवाज में द फिल्म नील एंड निकी। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

एसबीएस की जरिए एंड फिल्म गुरु गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हाजिल फिल्म का नाम उसी फिल्म से ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना अभिजीत की आवाज में। चले प्रोग्राम में अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

फिल्म का नाम हाँ मैंने भी प्यार किया, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में अलका जी की आवाज में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई जहरीला इंसान फिल्म का नाम उसी फिल्म से ये खूबसूरत सा गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम है जंजीर।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म ये वादा रहा उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म यकीन की ओर लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। लता के बाद चले द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं।

एक फिल्म यहूदी मुकेश जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा रहा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले आज की प्रोग्राम में फिर से लता जी की ओर हम आप भूले चलते हैं।

मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। सुनो वालों, चले प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है उमराव जान। नई खतीन होंगे।

ये गाना आशा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। Sunnevallo Studio K, telefoonnummer 030-262-6611. Aurebaki had ik informatie gelie, telefoonnummer 032-65-65-60.

सभी सुनने वालों की सेवा भी आसरो मीठे किए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में एक गाना है की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और आश

परमेश्वरी मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुलि रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुलि रामलाल, दी यू फॉर हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt u reageren? Kan het altijd? Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

दिल में सनम की सूरत, आँखों में रोशनी है, मेरी खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। इस हुसैन कुमार सानू एंड अलका याचनिक ने कहा द फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। En uit de film Ruhi komt gezongen door Sachin Jigar, Aziz Kaur en Divya Kumar. Pandghat.

0: नजर से।
1: मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना फिल्म अनारी से दिल की नजर से, और अब आप सुनिए पुरवैया शंकर माधवन की आवाज में फिल्म तूफान से।

कुणाल गांजावाला की आवाज में आपने सुना फिल्म क्योंकि से। दिल कह रहा है तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। और अब आप सुनिए नेहा कक्कर, मनोज म्यूजिक और हर्बी की आवाज में फिल्म गुड न्यूज से, लाल घाघरा।

मेरा दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी बस आउट द फिल्म मरते दम तक. एंड देन हाउ फर्दर मैट आउट द फिल्म जवान जाने मन. मेरे बाबूला gezongen door Harshdeep Kaur en Akhil Sachdev is het volgend liedje in het programma Geetum Kelleher.

तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, वॉज आउट द फिल्म बॉम्बे। एंड आउट द फिल्म दिल ही दिल में कम्स गसोंगा डोर हरिहरन एंड स्वर्णलता। इम्तिहान हम प्यार का देखे, राह देखे, क्या है नतीजा, डोला डोला मन डोला।

एली रे एली, क्या है ये पहेली? ऐसा वैसा कुछ तो हुआ है सहेली, ऐसा है द फिल्म यादें. En het volgende liedje in het programma Gitonkele her via Radio SBS is de titelsong van de film Janam Samchakuru, gezongen door Anu Malik en Hema Sardesai.

कुमारदु फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के ये समाये नजारे खो गए हैं, हम कसम से तुम्हारे हो गए हैं। En uit de film Durwa 2 komt gezongen door Anu Malik en Neha Kakkar. Uchiha Building 2.0.

दुपट्टा मेरा वस द फिल्म मुझे कुछ कहना है इसका सॉन्ग अनुराधा श्रीराम द फिल्म अजनबी कौम कसम से तेरी आंखें अय्यारे अय्या।

अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आपने सुना सुन मितवा। फिल्म का नाम है लगान। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म गदर से। उदित नारायण की आवाज में आप सुनिए उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।

फिल्म मेड इन चाइना से आपने सुना नेहा कक्कड़ की आवाज में ओढ़नी, और अब आप सुनिए सोनू निगम और अलका याचिक की आवाज में फिल्म रेफ्यूजी से। ये फिल्म पहला फिल्म है अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। ऐसा लगता है जो ना हुआ है होने को है।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.